ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय

ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

सत्य धर्म शांति प्रेम सबको दीजो, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूप आप है, सत्य धर्म।

पुटपर्ती पुरंदर नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा गोविंद गोविंद नारायणा।